0: 啊，但对某个巴拉俺做北京大伯家养的了，大家说俺说某伯家养的，啊，对你别那罗素姐姐脱炕的，啊，对你别去那啊，中国家给不就啥啥的，但对说俺说是亚洲的了，啊，但天气干啥了，啊，对你中国家给那样的，罗素姐姐那样的，你说出马的起来就能身体就俺说没事要养的嘛的，中国家给几百个是搞家给不就，家给都没事你嘛的，罗素姐姐几百个是那得离婚去的。
1: 我听的了，但是出马的文章啊，你讲是那个大伯的人家的那个，你大伯的差的有吧的？啊，中国家开始啥家一笔个啥家的，大伯的中国家开始吧，说说几句脱岗一笔个是了，脱岗的大伯的啊，说说几句离婚的人吧，啊，大伯的人家的名字啥一笔个就大伯的，年纪名字的生前干啥的人没意思啊，我的对的。但俺说啊，学校大伯的，今天你把这吃的是对了哒，嗯，这个他等于就是个哪呢？俺说啊，大年纪名字啊，啥的是个有意思，但大年纪名字的啦。
0: 啊，现在俺做个的呢，提前了打，给这当，他为这当，他不，哦，给这当，他比个是了，给这当你的我记得知道吧？当你记得知道吧？为这当他比个是了，为这当是呢，叔叔干的没吧？对你我记得知道吧？但在这个边就一样了哇。但在买一把个烟个空那个，当你这边这个，那把烟在这边就哎呦，是吧？那，啊，他在俺做上的光嘛能去有的，啊，有把意思，啊，别那他大些就没有的吧？啊，对呢，对呢，拉下一点的吧？啊，对呢，就是这大的的。
1: 我这所个日个的呢，把个这个这的，在以前呢，我大姐跟这样的公司都把认识。这个呢，大姐就没一笔个，几笔个是了，啊，大姐这样明人，明这样大姐的，是吧？哦，大姐是老师明这样，就要嘛的明的，过大姐这的，因为这是明嘛，一把个大姐这样的，我说你个是黑呀，要嘛的哇，大姐的明明的大姐差的把的，我大姐这样的十八差的有的，啊，这个拉下一笔个是了，拉下拉下谁的，稍微啊，这个一二三啊，蛮多，哦，历经一波的差的有的。 听闻的是了，你打不了，打不掉了啊！你女朋友心里紧张的，别个，你打死个有的，大姐姐没打不了。啊，你拉下一个，你打不，直接个立刻打不掉，打不了，怎么办呢？啊，你女朋友心里紧张的，别个，啊，你打死个有的。听闻的了，哦，你女朋友心里紧张的，别个，你打一个男人，你不个心里紧张的，别个，你打一个男人，再一查呢，哦，你是从哪的？我打几个人家的呢？啊，你，哎，也能这个认识。 但人家他用开心开心个弄了，我打起了螺丝了，哦，你说了，其实呢，你不心里紧张的，别人家他，你不心里紧张的，别人家他是呢，可得了十多年，也把这干呢，也把点这有的，他得说的其实呢，可，然后第一个我打起个这样个弄了，可没事个，这说他妈的，可十多干嘛都，可我打起个这样没呢，啊，得了螺丝个，其实是的了，可也是个把点这就没事。
0: 大大姐姐三八点呢，表娘龙车人车里空，看给宋大路车人车时，向来明天俺就人车先去了，该是去。他这里俺做嘛学习的是，俺的亲生，他考上个现场的车里呢，他人家个等于就是个弄了，顶把的他啊，当年这边这样的，他第一次他打入车里呢，结巴。
1: 啊，别当北京人，但对人家个也要个弄多事情，就吃啊吃。俺说提前价格，别当北京人吃啊些，别当北京人吃啊些的人，这个人这几年不偏执不得了，就别当北京就你啊，这样一把点点别跟人家谈的起了，别当北京人吃啊些个。要别那啊，最近这就打破是啊，东跟打瓦是，现在你嘛是，俺得打不了，最近这就打破是别个是了啊，俺呢啊，最近这北京是，这别讲了哑巴的，现在俺打破了别哑巴的。 东跟大瓦一比个是啦，啊，你大瓦的北西啊，对北京的其实呢，东我东的西呢，我东的大瓦那一就国兴干了哇，哦，对重庆的也比强呢，啊，你东的其实呢，大瓦个相当干，但对大瓦来说，毕竟呢，啊，如是个一些个，但如是个现在嘛在呢，别的北京一个我进了不就行呢，给啥个解决吧嘞？给叫给啥个解放战的嘛的，再有强呢，东的大瓦也是个嘛的，大瓦的东也是个嘛，东的啊，你北京的大瓦的北西，现在你是你嘛一比个是啦。 啊，你想到这话的，你们那一句可说里没吧？你们那一句最后的明白，啊，是吧？原来的你偏得真的吧？但是人家了，现在的，哎，你北京市的，的确是那，你们的北京话的人，他一样，别的北京人，那把研究员，别那，我那提交了，当然有把握，哦，当然有把握，我当初比得嘛的，哦，第一个是了，当然有把握，后边个是，那为啥的，我阿给为啥，阿给我跟这这个彻底讲过了，我当初比得嘛，后边个是把门开就没得嘛的。 啊，我们那边也多，我当初比把阿给个比一些，人家这个车的价格嘞。我听着嘞，要当着一包，一比个是包的北京当啊，当的北，我当初比大马一比个是大马的北京当，我的啊北。 ती कसला कौन तो तोता कौन कितनी पैदा पेजी निंजा के पेजी तेरा दरों ना दें ये छिपा तोस क्यों रे डोंग नावा शांते ये न्यूज़र ट्वेंटी जो ताबो ही बिगास ला अनि पेजी ते सोते गोले आया पेजी तेरा निंजा छेते जर अनि पेदे मंजूर माजा क्यों रे ऐसा तान रावी पाव वादन सुबी दमा ही बिगास ला अनि पेजी ते जुल माजा पेदे चले से दिले यंग गोले आ जाने ती पाला सुबा सा जिग जाने नावा दान सुबा आलासो मन निर्णय की तुम्हारे साथ एक जाजे ने इन्हें त्याग चेहरे से नंदे रख चेदी जाके वाले नीजी तेजो या चाहिए चाहे इन्हें पैदा पेजी निंजा आ के तेंते मिंडे राचा दिवारे वो ताते चेहरे से दिलो गिबाते से पैदा पेजी निंजा आते मिंडे रासे हैं तो ने ताते इंसाना आलासो गबाद कहाँ जनान जीवन जा तो नहीं को चिक्स होना बस इन्हें या योरे तब ये जा ना तो तोयर मचे तां अने गे पारी सांझी लास बस शिजी दार के मोमो चिके इन्हें जोगी ने जोची जा से ने कुसदल या ची शेवर इन दला यह मिसक गिबाच यो सारे चंदे से दिल तां जोगी तां जोची जा से दिल जेड़ा जन जेगियो तां जेची � जोगी ने जोची जिंदा तंजे के तें तें भी जड़ा तेला जोगी जोची जिंदा तें भी जड़ा से क्यों रे तातेला पे या भाई ना वाला सो जाना को कुचें दब बाबू सेव दब ट्रायब जो कशो दब अंदोई ता दब वाह न तब ने समय ना जाना को कुचें ही भी कसला ता गाजो कुचें दे गाजो जाना ये ला हाचांग ता तर्दों तीन वित्त से किचे जाना के किचे ही बिका सला किचे ते जो दबो जाना ही बामुगो ने जाना के किचे ही बिका सला किचे ते कहाँ ने ठेसा के येर ते जाना नहीं है पा किचे ते कहाँ ने ठेसा के येर ते जाना नहीं है पा बाबी सेव ही बिका सला सेव हिंदू सेव ते ठेसा के येर जावो ते बाबो ने ठेम बिका हिंदू है ताए जो कशु ही बिका सला कशु ते ठेसा के खून या ना ठेसा के यें रबोटे ट्राई कुछ नहीं थे कुछ नहीं बा अंदो इतना ही बिका सिला ताते ठेसा को खून रबोटे ये ते अंदो के सानी है बा वंदे का सिला अने जाना को कुछ ही बिका जी जाना बाबी सेव ही बिका जी बाबू ट्राई जी कुछ ही बिका जी ट्राई अंदो इतना ही बिका जी अंदो ते सोते ते जी जो कुछ ना सेव ना कुछ ना ता लास बन रची ते सो न्यूसा को खून न्यूसा के यें बाते देंगे और इस तेरे ये बा यें जा आर ती पाजी ते ने रडा कचे ते न्यूगी ना न्यूजी जिन जाने बिगन रडा से क्यों ता चबा दे चले से दिल ता जड़ा लता कौन दिखे बात तेजो समय बस शतां के चिक्चा निंजा वाले तो नहीं आयो रे चिक्चा निंजा ता टेंड रे से आजू ठेका निंजा ना बो तेज जा दिखे कि ना हिज में दे बात चिक्चा निंजा पे ना ओ को के टेंडा हिज नुक दब आ कि किसा टेंडा हिज नुक दब ओ यंच रे दब टेंडा तो हिज ये दब ओ यंच रे हिज ये हिज नुक दब ता नजे के कास ला नगनों ने चेता चेते सो समाते जड़ा के चेते ये बात हिमा की बारे जरा चाहिए बस ही मगर वही जान ता ये चिंदु ही बिका सिला काय ता चाकू कुछ जैसा ते ही से आते रहवा ते कि जिलन दूर है ते ने ही तं दूर निज पर लो काय ता चाकू कुछ तो जाने वो चित्ती निज पर निज आज देंगे रो मातों ने देंगे ने अंदर से गंसु कासी बने चीज़ ना ते ही मेडी भी सोना पुजी रे ते इंदर न ता बारे चले ना ता चीज़ निज आज यार चीज़ निज आ ते इंदर ता कौन दल ता जरा ले चले से दिले वो शतान का गंसु देंगे तो ने सब ही ये दे भी गता नासी की टेंजी जो सुल गदां ती तो दल ता चीज़ निज आ जी दे या दोना चुन ना बच्ची योरे ता तेरा या तारो नासी की तो ने पाचा शे ना या तेरे मांबो ची यूं लागो नॉल तारो हाजांग का मांबो देने ची शिवा देने योरे योरे ता ता वेजा गें चासर जग सुमा ना योरे वो न ता भग ता चेसा गुरु को न जा को गलासो बाज न जा वा के तेरा ये वा तेरा तो बा वी की छा बा रे ये ना अने जे जा के टेंजी शिक्षा जी बा ला पेन शे चांस ये वा थल छे ना न्यू जान जूं ला वी कदा तो बा काचे ओ से ने गे जा दे जग ने सुन योरे ता देसो दि चे दे ना ता न जा को अने टेंजी जो सर्च को रे
2: टेंजी छे मा मा दे थिन जिन दा लबे छि मी शे जु जि जिन दा जि जि छे मा जि बे लों जिन दा सिंगेन छे मा ना ला गा दुन शा
3: जे जे ला सा वु मी छे दे ली छों जे ली से टुन जि छे जु जिन दा जे कि बे युन लो बे छन दे शुन जे सिंगे बु वी सी सुं बु
1: तान जे जे ला कों दे ये बे के छे रे सा आ तें जु जो सो देसो माई बाग आ ता दो दो शिगा को नाई माई बाग छे जा ने जु बे के जु से ये आयो रे ता नाई माई बाग छे जा ने जु बे के जु से ये का रे सा दे ला ता तांबो ते अने चिंग आशी उंगावा तें भी तेरन जुबास यहाँ दे आशी उंगावा तें भी तेरन जुबास तां आशी उंगावा तें भी तेरन जुबास यहाँ दे ला गांसु पेजे रावजी का भाई ना Tame Yalunga, Tanishun, Kiwan Tedin Yalunga, Tame Yalunga, Tati, Dizzy, Lodan.